0: हो कांची
1: लाहोरे को फैशन कसुरे
0: आ तस्ता जावा
1: बाबे कस्तु गम क्यों को हो
0: लो भनु तो
1: लो लो
0: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता

मुसमुस हासन चुरुट थुती करुणीलाई हेरी बसे की छे कान्छी नानी नया लुगा फेरी कोरके आँखा लाई हेर्छन् लाहुर।

दुखी है कस्तो रहे छ बिना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लाहुरे ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूलचस लाहुरे दाई लो

0: भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कब इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान

पिछलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो